0: ट्रम्पले दुई देशले युद्ध विराम गर्न लागेको बताएका थिए। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट।
1: इरानको प्रमुख सैन्य कमाण्डको मुख्यालयले इजरायलमाथिको पछिल्लो आक्रमण अन्त्य भएको घोषणा गरेको हो। उसले इजरायलले दक्षिण लेबनानमा हमला गरेको खण्डमा इरानले पहिलाभन्दा चरम र शक्तिशाली प्रतिकार गर्ने बताएको छ। इरानी राष्ट्रपति मेसुद पेजिस्क्यानले आफ्नो मुलुकले युद्धको मैदान वा वार्ताको टेबल दुवै नछाडेको बताएका छन्। एक्समा राखिएको एउटा पोस्टमा उनले आफ्नो देशको प्राथमिकता राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको शान्ति रहेको बताए। उनले कुनै पनि धम्कीबाट पछि नहट्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान र इजरायललाई गोलाबारी रोक्न भनेका थिए। उनले दुई देशले तत्कालै युद्ध विराम गर्न खोजेको पनि उल्लेख गरेका थिए। यसैबीच इजरायलको च्यानल 12ले राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुरोधमा इजरायलले इरानमाथि हमला रोकेको जनाएको छ। उक्त रिपोर्टमा हिजबुल्लाले आक्रमण गरेको खण्डमा दक्षिण लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी रहने भनिएको छ। इजरायली र अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको जनाएका छन्। तर उनीहरूबीच के छलफल भयो त्यो प्रष्ट छैन। यसअघि बेरुतमा इजरायलले गरेको हमलाको जवाफमा इरानले सैन्य कारवाही गरेको बताएको थियो। इरानले इजरायलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि इजरायलले पश्चिम र मध्य इरानमा हवाई हमला गरेको थियो।
0: यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ सकिन्छ। भोलि बेलुकी पाउने 9 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
2: Mais le continent doit encore accélérer les investissements dans l'énergie, comme je disais, les infrastructures, les compétences, l'innovation, pour permettre donc de consolider en fait en tout cas cette dynamique-là. Donc pour moi, l'avenir, comme vous l'avez dit, ou la trajectoire, doit dépendre moins de la capacité donc à produire des stratégies. Parce que comme je le disais, il y a suffisamment de stratégies, suffisamment de politiques industrielles ambitieuses et de qualité. Mais plutôt la capacité donc l'Afrique donc à les exécuter durablement.
3: Docteur Haruna Kabore, le baromètre de l'investissement industriel en Afrique que vous avez élaboré, comment ce baromètre peut-il aider les États africains à élaborer ou à ajuster leur politique industrielle?
2: Comme je le disais, le baromètre en tout cas il fournit à tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire aux États. Une photographie précise de leur positionnement industriel et de leur attractivité comparée. Donc un pays qui regarde ça, qui analyse son score et l'ensemble des produits qui sont développés avec l'ensemble des sous-pays que nous faisons, je pense que ça lui permet de le fixer dans l'année. Et puis, il va permettre effectivement donc, d'identifier les secteurs porteurs, l'ensemble donc, des facteurs de compétitivité, les freins, les obstacles dont on parlait tout à l'heure, de l'investissement. Et bien entendu, en regardant ce qui se passe ailleurs, les pays vont regarder les bonnes pratiques sur le continent pour essayer donc de les capter, les contextualiser, les adapter par rapport donc à son contexte national.
3: Docteur Haruna Kabore, je vous remercie.
2: Merci Monsieur Ferdinand Gogoua pour cette opportunité et cet échange enrichissant.
4: Vous écoutez BBC Afrique, Conakry, 93.9 FM.